0: और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
1: 905-275-3555 ग्लोबल ट्रेवल टूर के रबते का नंबर है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफ़र करना हो आप इनसे रबता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं। इसके अलावा हज और उमरा के स्पेशल पैकेजेस हैं। अंडर वन रूफ आपके लिए इमिग्रेशन और कौंसलर सर्विस के साथ साथ मनी ट्रांसफ़र की सर्विस भी प्रोवाइड की जाती हैं। 905-275-3555 रबते का नंबर है। कामरान रशीद साहब CEO हैं, रूह रवा हैं इस तमाम ऑपरेशन के, हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं आज के दिन। खुश आमदीद कहेंगे कामरान भाई। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम अशोक सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वाम तारुफ का भी और आपकी वसासत से तमाम आपकी आवाज़ सुनने वालों को भी मेरा बहुत बहुत सलाम।
1: बहुत शुक्रिया आपका। और हम हमेशा सीट सेल वाली बात पहले करते हैं उसके बाद बाकी टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो अभी भी PIA की सीट सेल जारी है या खत्म हो गई?
2: जी अशोक भट्टी साहब, बहुत आज आपने बात इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरू की। बिल्कुल सर, 2 दिन सिर्फ रह गए हैं।
1: ओके।
2: जी हाँ, ओनली 2 डेज लेफ्ट। 10th of May इज द लास्ट सीट सेल और बुकिंग आप कर सकते हैं 10 मई से लेकर 24 जून तक की ट्रैवलिंग के लिए।
1: अच्छा।
2: आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट टाइम है कि आप 15% डिस्काउंट के साथ टिकट बाय कर लीजिए। जैसा कि जानते हैं फ्यूल टैक्स लगा, फ्यूल टैक्स के बाद प्राइस हाई हुई, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने फौरी तौर पर 15% डिस्काउंट फेर दिया और उस डिस्काउंट को उन्होंने कई महीनों से जारी रखा जिसकी लास्ट डेडलाइन 10 मई है। अभी आप टिकट खरीदें। और ये इस बार की सीट सेल की खसूसियत ये थी कि इसमें 24 जून तक की ट्रैवलिंग को ऐड किया गया, यानी कि जून के महीने में जो फैमिली हाई सीजन को जो आप कैलकुलेट करते हैं उस सीजनैलिटी के अंदर भी जो है वो 15% जो है वो डिस्काउंट फेयर ऐड कर दिया।
1: और अभी अगर करना चाहेंगे तो जाहिर अभी उसका फायदा हो सकता है। दूसरी बात, ये लोग जो पाकिस्तान अभी जा रहे हैं और हज के बाद तो फिर उमरे के वीजे जो हैं वो खुल जाएंगे, तो जो लोग वो अपने साथ उमरे का भी पैकेज साथ ही आपसे ले सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, ये आपने बड़ी जरूरी बात बताई। ये जो जो जितने भी टिकट पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से एक्स टोरंटो इशू हो रही हैं या टोरंटो से ओरिजिनेट होंगी, अगर वो लोग पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में रुकने के बाद महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आगे ऑनवर्ड उमरा के लिए जाना चाहते हैं तो इसी फेयर के अंदर वो डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर वो कूपन ऐड करवा लें। और ये एक अच्छा बेनिफिशियल है। इसके साथ आप अपना कस्टमाइज उमरा पैकेज भी मैनेज कर सकते हैं और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर जो है उनकी अपने जो स्पेशल रेट्स हैं होटल्स के साथ अकोमोडेशन को मैनेज करने में और साथ साथ आपकी ट्रांसपोर्टेशन को भी मैनेज करने में। जरूरी नहीं है कि आप ग्रुप के साथ जाएं, आप अपना कस्टमाइज पैकेज भी हमसे बनवा सकते हैं जिसके लिए आप रब्ता कीजिए। रब्ता करने का नंबर है 905-275-3555 और इसी नंबर पर हमारा व्हाट्सएप भी मौजूद है या आप हमें ईमेल कर सकते हैं globaltravel786@gmail.com के ऊपर।
1: globaltravel786@gmail.com। आप माशाल्लाह से अगले हफ्ते या उससे अगले महल अराउंड 19 शायद आप हज पे भी जा रहे हैं माशाल्लाह अपना ग्रुप लेकर, तो इस वाले से थोड़ा सा अपडेट दे दीजिए। और जो लोग अगले साल हज पे जाना चाहें तो उनको क्या मशवरा देंगे?
2: अशोक साहब जी अल्हम्दुलिल्लाह ताला अगले वीक के बाद 19 मई को हम इंशाल्लाह अपना काफिला लेकर जा रहे हैं। हमारा ग्रुप रेडी है, तमाम तैयारियां मुकम्मल है। इंशाल्लाह अल्लाह की बारगाह में दुआ कि वो खैरवाफियत से लेके जाए और सब अपना खैरवाफियत से आज मुकम्मल करके वापस आए। आपका तआवुन, कम्युनिटी का तआवुन, उनकी मोहब्बतें, ये मेरा एक मेरे लिए एक सरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल से अभी कुछ लोगों के कॉल्स भी आई हैं और हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की और ऑन एयर भी आप लोगों की वसात से तमाम सुनने वालों को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपके आपके चाहने वालों का, आपके जानने वालों का या आपका अपना इरादा है हज करने का अगले साल का, तो अभी से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा दें। रजिस्ट्रेशन फ्री है, इसके कोई पैसे नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन का फायदा यह है कि आपके जरूरी डॉक्यूमेंटेशन उसकी आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए, क्योंकि इस साल भी मई के एंड में जैसे ही हज खत्म होगा विद इन मंथ और टू सऊदी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्रेशन ओपन कर देंगे जिसका लिमिटेड टाइम होता है और उसके बाद वो लिमिटेशन जैसे ही उनका कोटा मुकम्मल होता है फिर अंदराज करना मुश्किल हो जाता है। और मेरी उम्मीद करता हूं कि अगले साल के लिए हम जहां VIP पैकेज कर रहे हैं वहां इकोनॉमी पैकेज को भी देखेंगे। वहां बेहतर आपको पता ही है, हर साल हम जाते हैं अपनी अकोमोडेशन अपनी रिहाइश उसका खुद जायजा लेते हैं कि हम बेस्ट प्राइस के अंदर जो है मिनिमम कॉस्ट के अंदर बेस्ट से बेस्ट अकोमोडेशन कैसे दे सकते हैं। इसके लिए मैं जरूर अर्ज करूंगा, बार बार रिक्वेस्ट करूंगा अपने सुनने वालों को कि वो अपने अगले साल हज के लिए अभी से तैयारी करें, पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवा लें जिनका पासपोर्ट नहीं है, वो रब्ता कर लें, गाइडलाइंस दे लें पूरी, और उसके साथ ही पाकिस्तानी पासपोर्ट, मैं अगेन इस पे बात पे जोर दे रहा हूँ, बहुत जरूरी है कि आप अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखें। जिस तरह ये सिस्टम ऑन होगा आपका पासपोर्ट नंबर इनरोल कर दिया जाएगा, पैकेजेस जैसे तरतीब देंगे आपको इंशाल्लाह पैकेजेस की डिटेल्स दे दी जाएगी, उसके ऊपर आपकी च्वाइस है। एक बार सिस्टम इन हो जाए पैकेजेस के ऊपर निगोशिएशन या डिफरेंट ऑप्शंस वो हम बाद में तय करते रहेंगे। एक बार फिर मैं अर्ज करूंगा आप हमसे रब्ता कर लें 9052753555। मैं सोशल मीडिया पे और आपके इस आवाज की वसातत से अपने सामईन को अपने हज के अहवाल, वहां का सफर, उसमें आप लोगों को साथ रखूंगा इंशाल्लाह, और आकर के भी आपको उसकी अपडेट देता रहूंगा।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया करम भाई, और फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते आप यहीं होंगे, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। नंबर नोट करें 9052753555, 9052753555। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने पहले टेस्ट पहले दिन के इख्ताम पर 4 विकेट पर 301 रन बनाए हैं। 85 ओवर्स का मैच हुआ। मुशफिक रहमीम 48 और लिटन दास 8 रन पर नॉट आउट हैं। कप्तान नजमुल हसन शंतो 101, मोमिन हकी 91, महमूद हसन जॉय 8 और शादमान इस्लाम 13 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल ने टेस्ट डेब्यू किया है और ग्रीन विकेट कहा जा रहा था, लेकिन इतनी ज़्यादा तेज़ विकेट नहीं नज़र आई, और लगता ऐसा ही है कि ये हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है। अगर पाकिस्तान ने कल जल्दी विकेट्स ना लिए तो बांग्लादेश का पल्ला इसमें भारी नज़र आएगा। बाबर आजम इंजरी के बायस इस मैच में पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं है।

0: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी मेहंदी रिसेप्शन बर्थडे पार्टीज कारपोरेट इवेंट्स गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं इन हाउस स्टेजिंग ऑडियो विजुअल सिस्टम 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant 35 Dundas Street West Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी fish चपली कबाब कढ़ाई गोश्त चिकन टिक्का मसाला चिकन बिरयानी सीख कबाब रेशमी कबाब चिकन बोटी चिकन टिक्का बिहारी कबाब लैम्ब चॉप्स अफगानी टिक्का निहारी और बहुत कुछ खूबसूरत कुशादा पैटियो Barbecue Tonight Restaurant 905-268-0088 It's 905-268-0088

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी राजधानी राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी एंड एसोसिएट्स अब मिसिसागा के बाद स्कारब्रो में 2155 लॉरेंस एवेन्यू ईस्ट लॉरेंस और ब्रिजमाउंट का इंटरसेक्शन 416-757-9999। दांतों की कोई भी बीमारी हो, आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए। तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं। इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं। मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-567।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में रابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں آزان مغرب۔